0: एक पेज पर नहीं है, वही घर है, एक कम्युनिटी, एक फैमिली है। तो कहने का मकसद यह, इसी तरीके से जब इंसान इबादत करता है, एक ये इसका जिस्म है, हमने नमाज अदा कर दी, खड़ा हो गया, एक इसके अंदर रूहानी सिस्टम है। अब अगर रूहानी सिस्टम भी इसके साथ ही वो मसरूफ होगा तो फिर क्या होगा, वो फिर उसका इबादत का क्या ही मजा है, फिर वो असरात हम चाहते हैं वो असरात असर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों, मसलन मैं काम करके आया तो खड़ा हो गया नमाज में, तो मेरा मन वहाँ पर काम कर रहा है, अंदर वाला निज़ाम जो है वो चाहता है कि मैं सही नमाज अदा करूँ, बस सही नमाज अदा नहीं कर रहा, उसकी नीयत कुछ और है। इसका मतलब ये है कि जब उसको फिर पूरा नंबर नहीं मिले, सवाब नहीं मिलेगा, जब पूरे सवाब इसको हासिल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो फिर इसी तरीके से बस वो दुनियादारी में ही पड़ा रहेगा, वो असरात इबादत के नहीं होंगे। इस तरीके से रोज़े की मिसाल दे, रोज़ा का तकवा अल्लाह का डर पैदा करता है। इंसान रोज़ा रखने के बावजूद के अंदर डर पैदा ना हुआ तो क्या हासिल हो गया उसे। हज करने के लिए जा रहा है, वो कहता इरादा कर ले मैंने आज की बात कोई गलत काम नहीं करना, मैंने कफन पहन लेना है, दो चादरें पहन ली, बस वहाँ पर जा, वो कहता है जिंदगी भर मैंने बहुत काम किया, अब तेरी बारगाह में आ गया हूँ, इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं करना, तो सुबह उठा है। लेकिन जो वो कपड़े दोबारा पहन कर जनाब इधर फील्ड में आता है, फिर उससे ज़्यादा कर देता है। अब क्या असर हुआ फिर जी, यकीन करें कुछ लोग तो ये कहते हैं, अब ये वैसे ये कुछ बात फ़कीर की है, कभी एक बार फिर झगड़ा हो जाता है। यकीन करें, एक आदमी जो है 5 टाइम का नमाजी है, ज़ाहिरी मेरी तरह का नमाजी है, और वो अगर कुछ गलत झूठ बोल रहा है, और एक आदमी है बिल्कुल नमाज भी नहीं पढ़ता, बिल्कुल इसी तरह है, उसको इल्म नहीं है, पता नहीं है, वो भी झूठ बोल रहा है, यकीन करें ये देखें कि किसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, मिलनी चाहिए और मिलेगी, ये तो आपके सामने बात है। एक आदमी जो है, और दुनिया कानून के अंदर भी ये बात है, अल्लाह का कानून तो और है, वो तो जिसको चाहे मारे, वो जानता है किसकी नीयत से पड़ा है, क्या कर रहा है, बस ये सब, ये तो उसका निज़ाम अपना है। लेकिन दुनिया का कानून ये है कि एक आदमी बिल्कुल बाहोश है, उसका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल खैरियत से है, जुर्म कर रहा है। एक आदमी ऐसा है जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, या तो मदोशी हालत में था, वो अपनी असल हालत में नहीं था, वो उसे भी वही गलत काम कर दिया, तो दोनों को जो है उसको कम सज़ा मिलेगी, इसको ज़्यादा मिलेगी। बात बस क्लियर हो गई। तो कानून जो दुनिया का भी बिल्कुल उसी बेस पर जो है वो चल रहा है। कहने का मकसद सिर्फ ये बात तो लंबी हो जाएगी, हम समझते ये हैं कि यार हमें अगर हमने इबादत करना है, खलूस नीयत से अल्लाह के साथ हमारा तल्लक जुड़ना है, भाई तल्लक अल्लाह से जुड़ना हो, दुनिया भी दरमियान में कैसे आ गई, उसको क्या हाँगा? उसको लाने का क्या है? यकीन करें ये भी अल्लाह का करम समझें कि जब एक आदमी इबादत की तरफ चल कर जाता है, वो सुबह सुबह सुबह जो है वो उठ खड़ा होता है, वो कहता है कि वो जाग जाता है, हैं जी, वो सो नहीं सकता क्योंकि नमाज का टाइम है, पिछली रात है, सार गाई का टाइम है, वो कहता है मैं सो नहीं सकता जब तक ये इबादत मैं ना कर लूँ, ये अल्लाह का करम समझें। वरना हमारी तरह के बेशुमार लोग जो हैं वो यकीन करें वो सोए हुए होते हैं, जब जागने का टाइम होता है वो सो जाते हैं, और जब सोने का टाइम होता है वो जाग जाते हैं, और असल क्रेडिट वो करना चाहते हैं जो उन बड़े बुजुर्गों सूफिया कराम का था, मकाम वो करना चाहते हैं, कहते हैं वो कुछ उनको कुछ पता नहीं था, आज हमें सब कुछ पता, लेकिन आदाब सारी अपनी मर्जी की हैं, काम ये मर्जी से कर रहे हैं, पर फिर मुकाबला उनसे है, लिहाजा बड़ा अल्लाह पाक हमें अदैन।
1: जाने आका फिर आमद है रमजान की, फिर वही खुशबुएं सहरो इफ्तार की।

इतने बेसिक खर्चे, मैं बेसिक चीज़ें पूरी कर सकता हूँ, मैं एक फैमिली, दो फैमिली, तीन फैमिलीज, मैं जितनी अफोर्ड कर सकता हूँ मैं उतनी फैमिली साथ साथ दोस्तों की, लोगों की, जो नीडी लोग हैं उनकी भी साथ साथ बनाता चला गया। तो अब दुनिया मेरे बारे में क्या कहती है, पहले दुनिया मेरे सामने बैठे, दुनिया तो कभी खुद सामने नहीं आती ना, वो आगे एक बंदा बताती है हमेशा, या सोसाइटी बताती है। तो पहले सोसाइटी को ना अपनी औकात बतानी है कि इसने क्या किया, ये शुरू कहाँ से हुई थी, उसने किया क्या, फिर मैं बताऊँगा मैं कहाँ से शुरू हुआ था। मैं यहाँ से, इस वीकनेस से शुरू हुआ था, इन 5 रुपये से मैं शुरू हुआ था जो मेरे पास नहीं थे और मैं यहाँ तक पहुँचा। अब आपकी क्या औकात है, अब आप बताएंगे, सोसाइटी वाले जो हैं या सोसाइटी जो है वो मुझे बताएगी कि दुनिया की वैल्यू मैंने सेट करनी है। ये दुनिया का हवा जो है ना, आपको इस बबल को ना फाड़ना पड़ता है कि कौन दुनिया भाई, कोई एक आदमी इस काबिल हो। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में 8-10 लोगों को मिला हूँ जिनको मैं, जिन्होंने कोशिश की हैवानी हालत से इंसानी हालत में आने की, जिन्होंने इस काबिल हैं कि उनको रोल मॉडल किसी एक चीज़ के लिए बनाया जाए, ज़िंदगी के एक एस्पेक्ट में उन्होंने एक्सेलेंस अचीव की, उनकी कोई से है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। जो इस वक्त दुनिया में लोग हैं मैं उनकी बात करूँ, जो दुनिया से चले गए उनकी बात नहीं हो रही, वो तमाम लोग जिन्होंने अगेंस्ट ऑल ऑड्स कुछ बनाया, कंस्ट्रक्टिव या प्रोडक्टिव, किसी इंसान के लिए भलाई की या अपनी कुछ बेहतर चीज़ें की, और कोई ऐसा काम दुनिया में करके गए या कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी इज्जत बनती है, कुल 8-10 ऐसे लोग हैं। ये लोग जब मेरे सामने बैठेंगे या मुझे चैलेंज करेंगे तो फिर मैं इनको बताऊं कि जी सर ऐसे हुआ या मैडम ऐसे हुआ और मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बात। सिर्फ इन 10 लोगों को मैं दुनिया समझता हूँ, बाकी लोगों को मैं ज़्यादातर को बेचारे समझता हूँ, मुझे उन पर तरस आता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कुदरत के कानून में किताब के मुताबिक चौपाए से भी बदतर है, हैवानी हालत में। तो पहले तो ये दुनिया इस तरह क्वालिफाई करे कि मैं इनको, इसको कुछ समझूं, फिर उसके बाद से मेरे से क्वेश्चन आंसर करें। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक आदमी, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, गांधी साहब ने 40 साल फर्ज करो एक काम में, एक चीज़ की खोज में गुजारे, एग्जाम्पल साथ दे देता हूँ, और उन्होंने वो कुछ कंक्लूजन्स पे पहुँचे और उन्होंने किताबें भी लिखी, उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी भी आसान की, उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी होंगी, ऑफकोर्स इज़ अ ह्यूमन बींग, लेकिन जिस मकसद से वो निकले उस मकसद के लिए लोग उनको कत्ल भी करना चाहते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं जिनको कंडीशनिंग किया गया है किसी मदरसे से या किसी जगह से, वो उठ के खड़े होते हैं और कहते हैं जी ये जो हैं वो दहरिए हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं और उन्होंने फलां वाली बात ऐसे की। आपकी औकात ही नहीं कि आप गांधी साहब जैसे, पहले तो आप 30-40 साल उस काम में रहें, पहुँचें, समझें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने के काबिल हों, इतनी आप औकात बनाएं, फिर उसके बाद किसी एक जगह के ऊपर सामने आए, मुनाजरा करें उनके साथ, बैठ के बात करें कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद भी आप उनको वाजिबुल कत्ल या उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते, उन्होंने अपने कंक्लूजन निकाले हैं। आप बताइए आपने 30-40 साल इस अरक्रेजी जो की है इस रास्ते में, उससे क्या कंक्लूजन निकला। एक स्कॉलर को स्कॉलर चैलेंज करेगा, बच्चा नहीं कर से उठ के चला जाएगा जिसको कख नहीं पता किसी चीज़ का, और ना उसको पता है कि ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है और किस वजह से कही गई। ये मैं उनके साइड नहीं ले रहा, मैं दुनिया में कोई भी आदमी जो कुछ भी कर रहा है, आप स्टीवन स्पीलबर्ग को एक आज या बच्चा उसे कहने जी काम ऐसे नहीं ऐसे होता है, कुछ दिनों के बाद उसको लग पता जाएगा उसके लिए उसने क्या बनाया है, क्या दिखाया है। सिर्फ डायरेक्टर का स्टूडेंट होना या डायरेक्शन सीखना क्वालिफिकेशन नहीं है उसके लिए, बहुत जब वो जाएगा बनाएगा, मामलात आएंगे, चीज़ें बनाएगा, पहला ऑस्कर ले, दूसरा ले, तीसरे ले, चीज़ें दिखे बनाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इस काबिल हो कि स्टीवन स्पीलबर्ग उसको कुछ समझे तो फिर वो आपस में बात करने के काबिल हैं। हमारी दुनिया में और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की दुनिया का मसला ये है कि हर बंदा, वो गाँव में ना बड़ी अजीब सी मिसाल थी, घर में दोबारा कोई उसको खाना नहीं देता, सालन मांग ले तो वो नहीं देते, लेकिन ये भी सोशल मीडिया पे बैठ के तो ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं और कोई क्वालिफिकेशन उनकी ऐसी नहीं होती है। सच पॉइंट देना अगर आपने तो उसका एक तरीका है, डिसएग्री करना है तो आपने एक तरीका है, लेकिन बदतमीज़ी, बदतहजीबी और इस काबिल होना कि आपकी भी कोई वेटेज हो किसी इंसान की ज़िंदगी में, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं चाहे जो भी आदमी हूँ, मैं आज़ाद साहब के बारे में बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बंदे की ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। मुझे, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इट, मुझे कोई नहीं जानता है तो बहुत अच्छी बात। मुझे किसी महफिल में जाता हूँ, आज जैसे अफशन जी ने भी बात की थी, किसी भी महफिल में जहाँ क्वेश्चन आंसर्स हो रहे, तो मैंने कभी उठकर कोई सवाल नहीं किया। पिछले 20 साल हो गए मुझको इस काम में भी, लोग मुझे सुनना भी चाहते हैं, मुझे पता है वो कहते भी हैं सर आप अपना भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, कभी कहते हैं जी आप इनका इंटरव्यू कर लीजिए, कभी कहते हैं जी फलां जगह पे आके आप टॉक दे दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं बात करना चाहता क्योंकि मेरे पास अपना एक प्लेटफॉर्म है, मुझे जो बात करनी होती है मैं इस पर कर लेता हूँ, जिसको सुनना है इस पर सुन लें।

आजकल लोग सड़कों पर चलते फिरते चोरी के मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें फरोख्त करते हैं। चोरी की चीज़ें खरीदने का मतलब आप इस चोरी में शामिल हैं। इसलिए चलते फिरते लोगों से चीज़ें हरगिज ना खरीदें, बल्कि ऐसे अफराद के बारे में पुलिस को आगाह करें। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

तो ये हो गया थोड़ी सी बात अर्रहमान अर्रहीम के बारे में। अच्छा, लेकिन एक कंफ्यूजन भी आ गई, वो भी समझ लें। रब में सरबराही के, सरदारी के मायने थे कि नहीं थे ना? मसला ये है कि जब किसी की अथॉरिटी होती है ना, तो आपकी दो तरह के मैनेजर्स होते हैं। एक मैनेजर होता है कोई एक एक चीज चेक कर रहा था, इसको माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कर रहे हो, कितना टाइम लगेगा, अच्छा दिखाओ क्या किया, हर मिनट चेक कर रहा है। एक मैनेजर होता है, कहता है इस हफ्ते ये काम मुकम्मल कर लेना, मैं जुम्मे को चेक कर लूँगा, खुली छुट्टी, पूरा एतमाद है कि तुम कर लोगे, मुझे बार बार तुम्हें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कहो मैं घर से काम कर लूँ, काम कर लो, जहाँ से भी करो, दरख्त से लटक के कर लो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तुम काम कर लो, जुम्मे को मुझे दिखा देना। ऐसे भी बॉस होते हैं कि नहीं? एक होते हैं जो हर चीज़ को मैनेज कर रहा है, और दूसरा खुली आज़ादी देके बस मुझे रिजल्ट्स दिखा देना, ये तुम्हारी डेडलाइन है। अगर अल्लाह ताला हमारे ऊपर इक्तदार रखते हैं, रब हैं, तो उनका हक है वो किसी भी लम्हे पूछ लें। लेकिन दुनिया की ज़िंदगी कैसी बनाई है, किस किस्म की मैनेजमेंट है अल्लाह ताला के? नमाज पढ़नी है, 5 वक्त पढ़ना, नहीं पढ़नी सोते रहो, वैसे पढ़नी चाहिए, मैं उठाऊँगा नहीं, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, लेकिन बोलोगे तो आसमान से कोई बिजली आके नहीं लगेगी ज़बान पे, बोलना बोलो, मैंने बता दिया नहीं बोलना, बाकी अब तुम्हारा है, तुम्हारी ज़िम्मेदारी, ऐसा ही है ना। उसकी मैं आपको इंसानी मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अब ग़ुलामी नहीं रही उस तरह की, लेकिन मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ, आप फ़र्ज़ करें कि आप मेरे पास आए, कहते हैं आज के बाद आप मेरे ग़ुलाम हैं, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, ग़ुलामी कबूल कर लीजिए आपकी, क्या करूं जी आपके ग़ुलाम होने के नाते, बस ये एक मैंने एक दायरा बनाया है, इस दायरे के अंदर रहना, बस बाकी कुछ नहीं, इस दायरे के अंदर रहना। कहो जी ये तो बड़ा आसान काम है, अब मैं दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और आप मुझे दूर से देख रहे हो, एक दिन मैं ज़रा फिसल के गिर गया दायरे के उस तरफ, जब मैं दायरे के उस तरफ गिरा, मेरी नज़र फ़ौरन कहाँ गई, मालिक की तरफ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से बोलते कोने पे फिसल गया था, अब नहीं होगा अमल, मैं कुछ भी नहीं कहा, ऐसे बस एक लफ्ज़ नहीं कहा मैंने, मेरे जहन में आया माशाल्लाह बॉस तो वैसे काफ़ी हल्का हाथ रखा हुआ उन्होंने, इतनी को सज़ा भी नहीं मिली। तो 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा ख्याल आया कि मैं ज़रा एक और दफ़ा गलती से करके देखूँ क्या होता है, तो मैं गिरा, फौरन मैंने देखा जो मेरे मालिक हैं वो बैठे हैं चेयर पे, उठे भी नहीं चेयर से, और फिर मैं कहूँ सॉरी सॉरी, वो कहते अच्छा जी ये तो इतना कोई सीरियस नहीं है जितना मैं पहले समझ रहा था, मैं पहले बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इस कानून को तोड़ूंगा तो कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा ना, कोई साथ में इसके बारे में मुआवजा होगा, कोई सवाल जवाब, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक पांव उधर, एक पांव इधर, एक पांव उधर, एक पांव इधर, और फिर मैं बॉस को भी, वो भी मुझे ऐसे, और फिर कुछ अर्से बाद में दोनों पैर इस तरफ, और घूम फिर रहा, और बॉस से भी, बॉस कह रहे लंच तैयार है, यानी ताल्लुकात में कोई वो अभी भी प्रोवाइड कर रहा है, अभी भी ख्याल रखे हुए है, और मैं लाइन के बाहर हूँ लेकिन कुछ नहीं कहा। अच्छा, मैं 5-6 साल इस तरह गुजार दिए इसी तरह से, इस दौरान मेरे साथ वो कुछ ज़्यादा रियायत नहीं कर रहा। अब वो जो ज़्यादा रियायत करता है ना कोई बॉस, तो उससे एम्प्लॉयज़ का क्या होता है पता है? ओए होए होए, मेरी एक बहुत पुराने ज़माने में मेरी एक जॉब थी, मैं प्री स्कूल टीचर था, किंडरगार्टन एंड प्री स्कूल, और फिर मुझे वहाँ से जब मैं फारिग हुआ तो मुझे एक जॉब मिली, मैं 3री जमात को मैथ पढ़ाता था, मैथमेटिक्स, तो जिस स्कूल में मैं पढ़ाता था सारी टीचर्स जो थीं वो सीनियर थीं, और बहुत ही यानी बच्चे देख के उनको, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि दादी याद आ जाए, दादी तो नाइस होती हैं, दादी नानी,
उनको देख के क़यामत याद आ जाती थी। मैं गया क्लास में, मैंने कहा मैंने इन बच्चों से दोस्ती करनी है, इन बच्चों को मैंने डराना नहीं है। मैं गया, मैं लतीफ़े सुना रहा हूँ, मैं टेबल पे खड़ा हो के ट्रिक्स कर रहा हूँ, अपने यहाँ पे पेंसिल घुसा के यहाँ से निकाल रहा हूँ कुछ कर, वो तालियाँ बजा रहे हैं, सर्कस बना हुआ है क्लास के अंदर। मैंने कहा ये बच्चे मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे एक दो दिन बाद जब मैं कहूँगा मैथ शुरू करो, दिल खोल के पढ़ेंगे। तो मैं समझा ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, मैं इतनी मोहब्बत से इनसे डील कर रहा हूँ, खुली आज़ादी दी हुई है। तीसरे दिन मैंने कहा चलो भाई बच्चो ओपन अप पेज 5, क्या हुआ पता है? एक मुझे कहता है नो, दूसरा एक दूसरे से कहता है डू द पेंसिल, वो पेंसिल वाली चीज करे दोबारा। मैंने कहा नहीं ओपन पेज 5, और मुझे अभी तक याद है एक बच्चा वो दीवार पीछे क्लास की दीवार पे गया, वहां पे वो यहां खड़ा अपना नाम लिख रहा है दीवार पे, और वो लिख रहा है और मुझे देख रहा है, और उसका दोस्त उससे कह रहा है यार टीचर तुझे देख रहा है, तो कहता है हां लेकिन ये अच्छे हैं। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर आपके साथ रहमत की जा रही है, आपका बहुत ख्याल, बहुत शिद्दत से मोहब्बत की जा रही है आपके साथ, और उस मोहब्बत पूरा मुकम्मल ख्याल किया जा रहा है, आप नाफरमानी करें या फरमा बरदारी करें आपका फिर भी ख्याल किया जा रहा है, तो उसमें इम्कान किस चीज़ का होता है कि आपको गलत फहमी हो जाती है कि ये तो नाइस ही नाइस है, ये तो है ही अच्छे नरम दिल के हैं। अल्लाह ताला ने सवाल पूछा है कुरान में, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे अपना रब जो तुझसे इतना तुझ पर करम करता है किस चीज ने तुझे धोखा दे दिया, क्या उसके करण ने तो तुझे धोखा नहीं दे दिया, धोखे में तो नहीं पड़ गया। तो जब कहा ना अर रहमान अर रहीम तो ये खतरनाक बात कह दी, रब तो वो है, रब में तो अथॉरिटी आ गई ना, इक्तदार आ गया, और उसके बाद फौरन तसली दे दी किस किस अल्फाज, किन अल्फाज से, अर रहमान अर रहीम। अब कोई अल्लाह ताला की हदूद से बाहर जाके उसने एक लिकर स्टोर खोल लिया, उसने कोई और हराम बिजनेस शुरू कर दिया और हरकतें शुरू कर दी, और उसको तुमको ये अल्लाह की हदूद से बाहर है यार, वापस आ जाओ हदूद के अंदर। यार तुझे नहीं पता एक लेक्चर मैंने सुना था अर रहमान अर रहीम, पता है कितनी चीज़ें, तीन चीज़ें होती हैं अर रहमान के अंदर और दो होती हैं अर रहीम के अंदर। छुट्टी है ना अर रहमान अर रहीम में, तो फिर बिगाड़ का सारा सामान इन दो अल्फाज में, जितनी रहमत है उतना ही बिगाड़ का सामान भी है। लेकिन फातिहा में जो बुनियादी रिश्ता है ना मेरा अल्लाह ताला के साथ, उसको सही यानी मीज़ान पर कायम किया गया है, तो फौरन अर रहमान अर रहीम के बाद क्या बात की, मालिक यौमिद्दीन, फौरन सीधा हो गया बंदा। मैंने कहा था ना मैं अपने मालिक से फेंस के बाहर में 5 साल इसी तरह छुट्टी गुजारी, 5 साल बाद मालिक मुझे बुलाता है, कहता है ये जो तुम बाहर खड़े हुए हो ना, हाँ मुझे पता है वो एक दफ़ा मैं आपने कहा था, लेकिन याद है मुझे वो भी क्या दिन थे, कहते मैंने वैसे उस दिन से रिकॉर्ड रखा हुआ है कि तुम कितनी दफ़ा बाहर गए थे, ये रिकॉर्ड है तुम्हारा, और आज तुम्हें उस सब की इकट्ठी सज़ा मिलेगी। अब बात समझ में आ रही है मालिक यौमिद्दीन क्या होता है। इंसान समझता है कि उसकी खुली छुट्टी है, लेकिन बाद में आगे जाके फौरन पकड़ हो रही है ना। अब ये एक अजीब सूरत है अल्लाह ताला की, इसके बारे में मैं जितना कहूँ कम है। आज सेशन होने ख़त्म होने से पहले दो बातें मैं आपके सामने रखूँगा, मालिक यौमिद्दीन के बारे में और अभी जो कुछ पढ़ा है उसके बारे में। दो लफ्ज़ जो हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब हैं इस सूरत में, एक रब और एक मालिक, है ना, एक रब और एक मालिक, और उन दोनों के दरमियान दो अल्फाज हैं, एक तरफ रब है एक तरफ मालिक है, और दरमियान में दो कौन से लफ्ज हैं, अर रहमान अर रहीम। अब उन दोनों लफ्ज के बारे में सोचें, उनमें से एक आर्जी और एक मुस्तकिल है। आर्जी वाला कौन सा था,
रहमान। और मुस्तकिल वाला कौन सा है? अब ये अजीब कलाम देखें अल्लाह का, रब्बिल आलमीन इस जिंदगी के बारे में थी वो बात या अगली जिंदगी के बारे में? रब्बिल आलमीन इस जिंदगी के बारे में, और उससे करीब तीन तरीन लफ्ज है और रहमान जो इस जिंदगी के बारे में है। मालिक का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है किस किस जिंदगी के बारे में, और उसके करीब तरीन लफ्ज कौन सा है? अर रहीम, जो हमेशा वाली रहमत, उससे करीब तरीन। क्या अजीब कलाम है, क्या तरतीब है इस कलाम की। रब्बिल आलमीन अर रहमान अर रहीम मालिक। अच्छा, शुरू रुबूबियत से रब, इंतहा मालिक से, और दरमियान में दोनों के क्या रहमत, यानी ये कभी मत समझना कि वो तुम्हारा, ये कभी मत भूलना कि वो तुम्हारा रब है और तुम्हारा मालिक है। लेकिन इन दोनों अल्फाज से डर लगने लगता है, लेकिन जब डर लगने लगे तो उस जितना गहराई में इस रिश्ते के दरमियान में पहुंचोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? रहमत मिलेगी। इसके बाहर बाहर अथॉरिटी है और अंदर अंदर मोहब्बत है, रब मालिक रहमा। अजीब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन। अब जल्दी से इन तीन आयात को मैं कम से कम आज मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। तो मालिक यौमिद्दीन के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ, ये बहुत आसान है समझना। दीन से शुरू बात करते हैं। दीन अरबी में कहते हैं फैसले को, फैसले को। दीन अरबी में ऑल्सो उसको भी कहते हैं, किसी से आपका मामला हो रहा हो ना और उस मामले को मुकम्मल किया जाए, मेरा मामला तय हो गया, उसको भी दीन कहा जाता है। कमात दीन तू दान, जैसे तुम दूसरे से मामला करोगे वैसा तुम्हारे साथ मामला किया जाएगा, ये अरबी की कहावत है। अच्छा, अगर शदीद मोहब्बत का जिक्र है अर रहमान अर रहीम में तो उसका मुतजाद क्या होना चाहिए? नफरत, अजाब। अगर एक तरफ मोहब्बत है तो उसका मुतजाद अजाब होना चाहिए, लेकिन उसके मुतजाद में दीन का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और दीन क्या है? इंसाफ, फैसला। और फैसले से क्या, किस चीज की तरफ इशारा हो रहा है? इंसाफ की तरफ। तो अगर आप इस तरह समझ लें कि जो मोहब्बत है वो पॉजिटिव है, मुस्बत है, और नफरत क्या है? मनफी है, तो अदल कहां पे होगा, इंसाफ कहां पे होगा? सिफर, ना मोहब्बत ना नफरत। अल्लाह ताला ने इतनी, उसकी इतनी अजीम रहमत है, उसने नफरत का, अजाब का, गुस्से का जिक्र भी नहीं किया, मनफी का जिक्र भी नहीं किया। अगर ये पूरा चार्ट होता ना, तो एक तरफ पॉजिटिव में अर्रहमान अर्रहीम होता और दूसरी तरफ अजीज़ व इंतकाम होता, अल मुअद्दिब कुछ होता, लेकिन वहां भी सिफर तक ले गए, मनफी तक नहीं लेके गए, सिर्फ दीन की बात की, यानी इंसाफ की बात की। और ये क्यों की? क्योंकि असल चीज जिससे हमें डरना है ना, वो अजाब नहीं है। फातिहा के मुताबिक असल चीज जिससे डराया जा रहा है वो इंसाफ है, वो इंसाफ है। इन्नहु मन सुइला यौमल क़ियामति फ़क़द हलक, एक रिवायत में आता है, जिससे उस दिन एक सवाल भी पूछ लिया गया वो तो बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला की रहमत उस दिन पता है क्या है? कुछ लोग होंगे जिनकी किताब उनके सीधे हाथ में होगी, अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला हम सबको उसमें शामिल करें। अच्छा, जिसकी किताब उसकी सीधे हाथ में है ना, उसके बारे में क्या कहा है कि वो सिक्योरिटी गेट पे पहुंचता है और वहां अल्लाह ताला ने कहा है फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा, उसके साथ आसान हिसाब किया जाएगा। आसान हिसाब से मुराद रिवायात से मिलता है कि फरिश्ते किताब खोलेंगे भी नहीं, गुजरने देंगे, जी हमें बताया आप जाएं, क्योंकि आपके कौन से हाथ में किताब है? अब आप नर्वस, आपके हाथ में तो किताब है, लेकिन आप कहें अगर आप ये पेज 130 पे जाएं तो उसमें एक हज है, वो ज़रूर देख लेना। जैसे आपका पेपर होता है ना, उसमें आपने बड़े उल्टे सीधे जवाब दिए होते हैं, लेकिन एक सही जवाब दिया होता है तो उसको आप पहले दिखाते हो टीचर को, ये वाला ये चेक कर लें ज़रा, ये वाला। अच्छा, ये अगर पेज 503 पे जाएं तो वहाँ एक शायद एक लैलतुल क़द्र थी मेरा ख्याल है उसमें एक, तो आप, लेकिन वो फरिश्ते क्या कह रहे हैं? आप जाओ, आपके ख्याल है, निकलो, कोई बात नहीं। अजीब साहब, दूसरी तरफ कहा है किसी की किताब उन लोगों के उल्टे हाथ में होगी, अल्लाह हमें उनमें से ना करे,
और उनकी पीठ के पीछे होगी, ऐसे होगी किताब, ना सिर्फ उल्टे हाथ में, पीछे। अब वो खुद भी नहीं देख सकता कितनी खराब है, उसको पता है खराब है, उसको ये भी नहीं पता है कितनी खराब है। अब वो भी आ रहा है सामने और उससे पूछा जा रहा है। अब यहां पर जब अद्दीन कहा है ना, तो इससे हमें इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि अल्लाह ताला उस दिन का भी मालिक है, जिस तरह वो रब इस दुनिया में है, उस दिन वो रब नहीं होगा, उस दिन वो क्या होगा, मालिक। तो क्या निकल गया रब के मायने में से, क्या निकाल लिया गया, तोहफे देने वाला, ख्याल करने वाला, कायम रखने वाला, जो उसके नरम नरम मालिक है ना, वो सारे निकल गए और क्या रह गया, मालिक। उस दिन तो अथॉरिटी होगी, या तो रहमत होगी या फिर ये। और अगर आप इस तरह भी समझ लें कि रब के अंदर दो पहलू हैं, एक मोहब्बत वाला पहलू भी है रब के अंदर और एक इक्तदार वाला भी है, तो रब के अंदर वो जो मोहब्बत वाला पहलू है ना, वो अर्रहमान अर्रहीम में सामने आ गया, और रब के अंदर जो इक्तदार वाला पहलू है वो कहा, मालिक यौमिद्दीन में सामने आ गया। इन तीनों अल्फाज का आपस में एक जोड़ बन गया। आखिरी चीज है, ओके, दो चीजें, यौम, यौम किसे कहते हैं, ओके, अल्लाह ताला ने अपने बारे में ऐसी बात की है जो कभी कोई अपने बारे में या किसी और के बारे में कह ही नहीं सकता। फरमाते हैं दिन का मालिक। देखें, आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते हो, किसी बकरी के मालिक हो सकते हो, किसी कंप्यूटर के मालिक हो सकते हो, लेकिन आप एक मिनट के मालिक नहीं हो सकते, आप एक सेकंड के मालिक नहीं हो सकते। वक्त की मिल्कियत मुमकिन नहीं है। एक चीज है जो आप जो भी कर लो, जितना भी पैसा आ जाए, जितनी भी जितना भी इक्तदार आ जाए, एक चीज है जो आप कभी भी ओन नहीं कर सकते, वो क्या है, वक्त। और वहां उसने उस एक चीज की मिल्कियत अपने सामने साबित की है, मालिकी यौम। और इससे बहुत अजीम बात सामने आ गई। अगर मैं कहूँ कि ये यहां पर एक थैला हो और मैं कहूँ ये थैला मेरा है, ये थैला मेरा है, या ये बैग मेरा है, तो उस बैग के अंदर जो कुछ भी है वो भी किसका है, मेरा ही हुआ ना। अगर अल्लाह उस दिन का मालिक है तो क्या बात निकली, उस दिन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उस सब का वो मालिक है। उस सब को एक्सप्लेन करने में बाकी कुरान है, लेकिन वो पूरी बात एक ही मुहावरे में शामिल हो गई जब कहा मालिकी यौम, मालिकी यौमिद्दीन, सुभान अल्लाह। यानी बहुत थोड़े अल्फाज हैं फातिहा में, लेकिन पूरी पूरी कायनात उनके अंदर मुजमर है। आखिरी बात इसके मालिक के बारे में समझते हैं। मालिक असल में दो किराआत हैं हमारे नबी से मरवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालिक भी पढ़ा करते थे और मलिक भी पढ़ा करते थे, मालिक और क्या, मलिक। मालिक के मायने उर्दू में जैसे हैं वैसे अरबी में है, मालिक, गाड़ी का मालिक, बकरी का मालिक, ठीक है, मालिक। मलिक किसे कहते हैं बताए, बादशाह को, बादशाह को। तो एक तरफ मालिक, दूसरी तरफ बादशाह, और दोनों के मायने यहाँ ज़रूरी हैं, समझ लें क्यों। बादशाह जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस मेरे ये जूते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा मैं इस जूते का बादशाह हूँ, मैं क्या कहूँगा, मैं जूते का मालिक हूँ। मैं घर का बादशाह हूँ या मालिक हूँ, मालिक। मैं कंप्यूटर का बादशाह हूँ, मालिक हूँ, मालिक। लेकिन अगर कोई किसी के पास पूरा आइलैंड हो या पूरा मुल्क हो, वो कहे मैं इस आइलैंड का क्या हूँ, क्या बात सामने आ रही है। बादशाह होते हैं बड़ी बड़ी सल्तनत के, और मालिक होते हैं छोटी छोटी चीज़ों के। जो बमुकाबिल छोटी चीज़ होती है उसके लिए मालिक होता है, जो बड़ी होती है उसके लिए क्या होता है, बादशाह। अब एक और फ़र्क भी समझ लें, अगर वो किसी मुल्क का बादशाह है, क्या तमाम छोटी छोटी चीज़ें जो उसकी सल्तनत में हो रही हैं उसमें उसकी नज़र है, हर बात पे, हर काम पे, हर किसी के सोने पे, हर किसी के उठने पे, क्या वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। आपकी कंपनी है, आपकी अपनी कंपनी है, आपके 50 मुलाजिम हैं, क्या आप हर मुलाजिम की हर परफॉर्मेंस को, उसकी हर बात को,
उसके हर एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं? जितना आपका कंट्रोल बढ़ता है ना, जितनी सल्तनत बढ़ती है, उतना आपका छोटी छोटी चीज़ों पर कंट्रोल कम होता चला जाता है। ऐसा ही है ना, आपको किसी और को मैनेजमेंट देनी पड़ती है, छोटे काम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास बड़े काम आ गए हैं, अब मैं छोटी चीज़ को हैंडल नहीं कर सकता। मालिक का क्या है? अगर मैं कंप्यूटर का मालिक हूँ तो उसकी रिपेयर मैं खुद करूँगा, मैं घर का मालिक हूँ तो उसका दरवाज़ा मैं खुद फिक्स करूँगा, अगर मैं एक मुल्क का बादशाह हूँ उसका दरवाज़ा मैं खुद फिक्स नहीं करूँगा, मुझे तो पता मेरा दरवाज़ा ख़राब है। बड़ी चीज़ों के लिए बादशाह, छोटी चीज़ों के लिए क्या? मालिक। अब क़यामत के दिन में दो तरह के काम हो रहे हैं। क़यामत के दिन में सूरज और चाँद एक दूसरे में टकरा रहे हैं, क़यामत के दिन में दुनिया फैलाई जा रही है, क़यामत के दिन में सारी इंसानियत को कब्रों से निकाला जा रहा है, क़यामत के दिन में आसमान फट के खुल रहा है, क़यामत के दिन में सारे फरिश्ते उतर रहे हैं। ये तो बादशाह का काम है, ये बड़ा काम है। लेकिन क़यामत के दिन एक एक अमल का जायज़ा लिया जा रहा है कि नहीं? ला युगातिलु सगीरतन वला कबीरा, ये बादशाह का काम नहीं है, ये किसका काम है? मालिक का काम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत दो तरह पढ़ी, क्योंकि उस दिन कुछ चीज़ें मालिक से मुताल्लिक हैं और कुछ चीज़ें मलिक से मुताल्लिक हैं। समझ में आई बात? और दोनों को शामिल कर दिया मालिकियों में दिन में। आपके जाने से पहले हमने तीन आयात का मुताला किया है इस वक्त थोड़ा सा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम और मालिक यौमिद्दीन। मेरे नज़दीक क़ुरान में अल्लाह ताला का सबसे जामे तारुफ़, कोई अगर कोई गैर मुस्लिम हो वो पूछे तुम किस खुदा की इबादत करते हो, तुम्हारा इस्लाम का खुदा कौन है, उसकी सबसे जामे तारीफ बस ये तीन आयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। पहली चीज़ जो मैं जो वो खुदा खुद चाहता है कि तुम जानो, जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं, वो हम्द का मुस्तहिक है, उसका नाम अल्लाह है, उससे रिश्ता तुम्हारा रब का है, और सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, तमाम सोसाइटीज़ का, तमाम इंसानियत का, अज़ल से अब तक, अलआलमीन। और उसको तुमसे ऐसी शदीद मोहब्बत है कि जिसका तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते, और ये भी तुम्हारे हाथ में है कि वो मोहब्बत तुम्हारे लिए हमेशा के लिए रहे, रहीम। लेकिन अगर तुमने उस मोहब्बत का फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो ये जान लो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं एक दिन आ रहा है, एक कल आने वाला है जिसमें फिर पूरा पूरा हिसाब लिया जाएगा, और एक बड़ी बड़ी चीज़ें

0: अल्लाह के बारे में, सो वाट, फिर क्या इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए? अगली आयत असल में इन तीन आयत का नतीजा है कि जो इन तीन बातों को, इन तीन आयत को समझ ले, वो कहाँ तक पहुँचेगा, किस फैसले तक पहुँचेगा और ख़ुद ही से पहुँचेगा। उससे कहा नहीं जाएगा इबादत करो इसलिए इबादत करो, ये नहीं कहा गया। कहा इयाका नअबुदू, हम तेरी ही, सिर्फ तेरी ही इबादत करने को तैयार हैं, करने आए हैं। यानी हम अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं, हम अपने आप को इस नतीजे पर पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह यहाँ से आगे जो असल मौजज़ात हैं इस सूरत के, वो आगे आने वाले हैं इंशाल्लाह, उस पर कल मुलाकात होगी।
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan.
0: जहाँ पे बास्केटबॉल गेम्स और बड़े बड़े मैचेस वगैरह होते हैं ना, उसने वो पूरा स्टेडियम बुक किया। वादे क्या कर रहा था? इस साल तुम्हारी सारी ख्वाहिशें जीसस पूरी कर देगा। क्या चाहिए तुम्हें?
2: Assalamu alaikum. In Luton and its surrounding areas, it is now time for Salat al-Isha.
3: Luton aur iske mazafat mein namaz-e-Isha ka waqt hua chahta hai.
4: This azan has been sponsored by Ideal Properties. Contact us on 01582 72110 or log on to www.idealpropertiesltd.co.uk.